सकल संसार को सदा स्नेहामृत पिलाने वाली देवी जगदम्बा को अनंत कोटि प्रणाम। देवी की दिव्यता अनादि तथा अनंत है, इन्हीं के दिव्य तेज से सकल ब्रह्मांड आलोकित है। देवी के दिव्य स्वरूप का वर्णन करने में संपूर्ण वांग्मय भी स्वयं को असमर्थ पाता है। यहां तक कि त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि भी उनके स्वरूप की कल्पना ही कर पाए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देवी के जिस स्वरूप के दर्शन किए, उस रूप में भगवती अपने कर कमलों में नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण किए हुए हैं, जो कि उनके रौद्र रूप का प्रतीक हैं। देवी शरद ऋतु के चंद्रमा की मनोरम कांति के समान परम शीतल एवं शांति स्वरूपा है। उनके मुखमंडल पर मंगलमयी मंद मंद मुस्कान सदा विद्यमान रहती है। त्रिलोक की आधारभूता ममतामयी मां महादेवी का मंगल स्मरण निरंतर करते रहना चाहिए।

सभी जानते हैं कि दैवी और आसुरी शक्तियों में समय समय पर संघर्ष होते ही रहे हैं। जहां दैवी शक्तियां सत्य एवं धर्म की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रही हैं, वहीं आसुरी शक्तियां अधर्म और पाप के विस्तार में निरत रही हैं। मार्कंडेय पुराण में ऐसे ही एक देवासुर संघर्ष का वर्णन आता है, जब दैविक शक्तियों के क्षीण हो जाने पर आसुरी शक्तियों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। दैवी शक्तियों के प्रतिनिधि देवराज इंद्र और आसुरी शक्तियों का प्रतिनिधित्व शुंभ निशुंभ नामक दो महाबली असुर कर रहे थे। शुंभ और निशुंभ दोनों ही दैत्य अपने प्रबल बल के घमंड में इतने अंधे हो गए थे कि उनकी विवेक शक्ति कब उनसे वियुक्त हो गई इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने न केवल देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं का अपमान ही किया, बल्कि उन्हें पराजित एवं अधिकारहीन करके देवलोक से निकाल भी दिया। इतना ही नहीं, वे देवों के यज्ञ भाग का उपभोग भी स्वयं ही करने लगे, जिससे चारों ओर पाप वृष्टि होने लगी और प्रजा में हाहाकार व्याप्त हो गया। पाप शक्तियों के सम्मुख श्रीहीन हुए मुख वाले सभी देवताओं को जैसे ही धर्म के प्रति अपनी उदासीनता का आभास हुआ, तो तत्काल ही उनके अंतःकरण में दिव्य प्रकाश का उदय हुआ। परिणामतः उन्हें स्मरण हो आया कि पूर्व काल में देवी जगदम्बा ने देवताओं को वरदान दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब विपदाओं का शीघ्र ही नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर अपूर्व उत्साह के साथ सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए और समर्पित भाव से भगवती विष्णु माया महादेवी की सुमधुर स्तुति करने लगे।

जिस किसी प्राणी में श्रद्धा का लेश मात्र भी विद्यमान है, उसका हृदय देवी मां का निवास स्थान है। देवी ही सभी देहधारियों में कांति रूप से विराजती हैं। देवी मां का लक्ष्मी स्वरूप तो राजा से लेकर रंक तक, मतिमान से लेकर मतिमंद तक सभी को अपनी माया से मोहित किए हुए हैं। प्राणियों की जितनी भी प्रवृत्तियां हैं उनमें भगवती ही वृत्ति रूप से समाहित है। प्राणियों की मति में यदि स्मृति स्वरूपा देवी की उपस्थिति नहीं होती तो संपूर्ण जगत में व्यवहार ही नहीं हो पाता। ये कृपालु मां की असीम अनुकंपा ही है जो वो सकल प्राणियों में दया रूप से विराजती है और उनके माध्यम से दीन दुखियों पर दया दृष्टि रखती हैं। ऐसी दयालु मां के श्री चरण कमलों में बारंबार नमस्कार है।

जिन भक्तों पर देवी मां की कृपा दृष्टि बनी रहती है उन सभी के हृदय में वे तुष्टि रूप से विराजती हैं। संतोष से बड़ा धन नहीं होता। संतुष्ट व्यक्ति के पास कुछ न होते हुए भी वो सुखी रहता है, जबकि सब कुछ होते हुए भी असंतुष्ट व्यक्ति दुखी ही रहता है। ये सब देवी के भ्रांति स्वरूप के कारण होता है। जो मां के इस रूप से भ्रमित नहीं होते वे सदा प्रसन्न रहते हैं, जबकि भ्रम जाल में फंसे लोग सदा खिन्न एवं उद्विग्न चित्त वाले होते हैं। भगवती के मातृ स्वरूप के बिना तो जीवन की कल्पना ही असंभव है। इसलिए प्राणी का स्वभाव कैसा भी हो, महादेवी माता के रूप में उस पर अपनी कृपा अवश्य करती हैं। मां जगदम्बा ही सभी प्राणियों के इंद्रिय समूह की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे सदा ही सब प्राणियों में व्याप्त रहती हैं। संपूर्ण चराचर की चेतनता का एकमात्र कारण पराम्बा देवी ही हैं। इस प्रकार प्रतिक्षण संसार के कण कण में व्याप्त और सभी प्राणियों को सहज प्राप्त देवी मां के पावन श्री चरणों में हम देवगणों का श्रद्धा पूर्वक नमस्कार है।

0: FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय सीताराम, दिस इज पंडित मुनिलाल महाराज इनवाइटिंग यू टू जॉइन मी फॉर द प्रोग्राम आत्मवाणी एवरी सैटरडे फ्रॉम 8 to 9 AM विद इंस्पिरेशनल मैसेजेस, विजडम ऑफ आवर एंशिएंट ट्रेडिशन, अपलिफ्टिंग भजन्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिवाइन सोल विद इन। टुगेदर Let us raise our spiritual consciousness to make this world a true heaven. For Dharma, Pandit Munilal, Jai Sitaram. Jai Sitaram.
2: The sweet sounds of the dholak, harmonium and dantal, the voices of our maestros, our masters of ten singing, local classical masters. Saturdays, 12 noon to 3, right here on your number one, Radio Jagriti, 102.7 FM. The longest-running local classical program on radio. And it's on your number one, Radio Jagriti, 102.7 FM. Saturdays, 12 noon to 3, with yours truly, Ricky Ramlagan.

एक बाल बलो श्री सत्य सनातन धर्म की जय। जय सीताराम डिवोटीज, शुभ स्वागतम एंड वेलकम टू टीवी जागृति एंड रेडियो जागृति। दिस इवनिंग वी स्पेशली वेलकम यू टू आवर स्टूडियोज वेयर बाय वी आर इन द मोड फॉर डिवोशन, spiritual upliftment, and to create a divine setting in your home, in your surrounding, in your minds. So wherever you may be located at this time, on behalf of TV and Radio Jagriti, Shubh Swagatam and welcome. We are

वेगं जितेन्द्रयं बुद्धिमताङ्गवरिष्ठं वतात्मजं वानरयूढ्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं।

मानने मम इष्टवरं सर्वसिद्धि प्रदायिनी ओम नमो भगवते वासुदेवायम। बोलिए प्रभु रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सियापति राम चंद्र की जय। सो डियर डिवोटीज, लेट अस डू दिस सुमिरन, द रामायण सुमिरन, एज वी क्लास्प आवर हैंड्स, एज वी वेंचर इनटू द होम श्री रामचरितमानस। इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी ऑल ऑफर प्रेजेस टू प्रभु राम थ्रू द मीडियम ऑफ दिस सुमिरन। जेहि सुमिरत सिधि होए, गणनायक करि वर वदनम, करौ अनुग्रह सोय, बुधि राशि शुभ गुण सदनम, मुख होहि वाचाल, पंगु चढ़य गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरुहु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमर मन करुणा आयना, जाहि दीन परने, करो कृ